0: जापान में हमें मुड़े तोड़े या बोसीदा नोट भी नजर नहीं आते।
1: जी हाँ, क्योंकि जापान का मरकजी बैंक बैंक ऑफ जापान पुराने नोटों को नए से तब्दील करता रहता है। खुसूसन 1,000 येन और 5,000 येन के नोट तो हर साल या 2 साल बाद तब्दील कर दिए जाते हैं।
0: और मुआशरे में नए नोटों का खसूसी किरदार भी तो है।
1: जी हाँ बिल्कुल, शादी वगैरह जैसी पुरमसरत तकरीबात में मुबारकबाद की रकम देते वक्त नए नोट खुसूसी तहनीती लिफाफे में डालकर देना आदाब में शामिल है।
0: ऐसे मौके पर नए नोट अच्छा तासर देते हैं। हमारे मुआशरे में भी ऐसा ही है, बल्कि हमारे यहाँ तो बच्चों को ईदी देते वक्त भी नए नोट देते हैं।
1: जापान में सिक्कों की 6 अकसाम हैं, 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन और 500 येन। जापान में जगह जगह चीजों की फरोख्त की मशीनें लगी हुई हैं जिनमें सिक्के इस्तेमाल होते हैं। तमाम इन मशीनों में 1 येन और 5 येन के सिक्के इस्तेमाल नहीं हो सकते। दुकान से खरीदारी के वक्त तक वो आपकी जेब पर बोझ बने रहते हैं।